0: दशमपहा अनुतुनाई दशमहाता लखांडे रेडियो आईटीएन सभी श्रीलंकीय हांडे
1: एकलाई विनारी काए
2: विलाव ओपवेते किन्ह आवे
3: वार्ता पिट वार्ता तबने कोटि अते एनएलबी धनरे धने लुटराईये प्रति संवर्धने तक तेवंत शक्तियक्वेमिंग ओबात तिनवार रटा तिनवटे धने निधने विलदीके नोबात कोटि पतिये कुवन

भावे शोक रोग भय अनतुरु अमनुष्य उपद्रव राज भय सुर सतुरु करदर गिनी बिय तिरिसंगत सतुन्गेन सितुवन सियलु उपद्रव दुरिं तुरु वेवा।